चंदर ही चीनी गिरती कृष्ण चीनी बेमी बर चीनी खिलाली जाओ नम जाओ नम खिला मंकी जी नम खिलाली खिलाली जाओ नम खिलाली मंकी जी हीरो नम खिलाली।